नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।

0: प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
4: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
6: मौसम विभाग

0: अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर

0: Aswani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है 107.1 FM Rainbow पर। 8:40 मिनट हो चुके हैं और आज मस्त मुंबई में हम आप सभी को ले जाने वाले हैं ऐसे सफर पर जो ठीक 11 बजे तक आप सभी हमारे संग तय कर सकते हैं। और पता है, इस सफर में आप तो मेरे हमराही हो ही, बट एक और दोस्त हमारा जुड़ चुका है। नाम है
2: आरजे अनूप। अमित, धन्यवाद, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया। और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत प्यारा और बहुत बड़ा नमस्कार।
1: क्या बात है अनूप यार, आज जबरदस्त बातें होंगी। हाँ, मस्त मुंबई में और साथ में नमस्ते भारत में भी। बट हम चाहते हैं हमारे सारे श्रोता हमारे संग जुड़े रहें, तो 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बट अनूप, चलो यार इस गाने के साथ आगाज करते हैं और आगे बढ़ते हैं ना।
2: बिल्कुल,

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएफ पर भी सुन सकते हैं।

0: दोस्तों आज वैसे 18 तारीख 18 मई। देखो देखते देखते ये आधा महीना बीत भी गया और आधे महीने के बाद अब हम अगर आगे बढ़े तो पता चले यार छुट्टियां धीरे धीरे बीत रही हैं, कई सारी फैमिलीज मुंबई से बाहर जा रही हैं, है ना। और अनूप जैसे कि हम देखते हैं कि हर दिन की कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और आज मंडे है, मंडे को मस्त मुंबई में हम मुंबई के मस्ताने सेगमेंट में आज के दिन विशेष बताते हैं। तो आपकी नज़र में आज की ऐसी कौन सी बात आ रही है?
1: अमित देखो आज जो कैलेंडर का पन्ना है ना वो भारत के इतिहास को बेहद सुनहरे और भारी भरकम अक्षरों में लिखने का काम कर रहा है
0: जी।
1: देखिए आज के दिन हमारे देश ने ऐसी दो छलांगे लगाई थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पहली की बात करते हैं अभी हम। देखिए अमित सबसे पहले चलते हैं हम साल 1974 में। आज ही के दिन राजस्थान के पोखरण की तपती रेत पर भारत ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी।
0: फिल्म देखने के बाद भी याद आ जाता है ये पूरा नजारा जो आप बोल रहे हो।
1: आई होप कि हमारे जो श्रोता हैं वो भी इसे गेस कर पाए हो। तो अमित 1974 में आज ही के दिन भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था और उसका नाम था कोड नेम जिसे हम कहते हैं स्माइलिंग बुद्धा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इस परीक्षण ने भारत को पूरी दुनिया की छठी परमाणु शक्ति बना दिया था।
0: यस
1: यानी आज हमारी जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पावर कहते हैं हम भारत की उसका एक कितना बड़ा दिन है सोचिए।
0: परफेक्ट।
1: और इस बात पर तो हमारे वैज्ञानिकों और सेना को एक बहुत बड़ा सलाम बनता है हमारी ओर से।
0: ऑफ कोर्स, क्योंकि ये पता है क्या कहते हैं कि मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा क्योंकि मुल्क मेरी जान है और इसी मुल्क पर मेरा दिल और जान कुर्बान है।
1: क्या बात है।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और

0: कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: कितना सुना रहा दिन है यार, धूप बड़े ही बढ़ चुके हैं, बट फिर भी यार स्टूडियो में आते आते जो एनर्जी हमें मिल जाती है ना, उससे बड़ा मजा आता है। और अक्सर ये आरजे सारी दुनिया को कहता है ना कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। तो इसी बात से हमारे सारे श्रोता पहचान जाते हैं अनूप कि यार ये बंदा है कौन। अब आप हमें बताएं कि ये आवाज जो आपके कानों तक पहुंच रही है वो आखिर है किसके, है ना। हमारे अनूप कह रहे भैया आपने आपका नाम ही नहीं लिया। तो हम बताना चाहेंगे यार, लोग आवाज से भी पहचान जाते हैं किस तरह है ये शो चलता है और इस शो को प्यार करने वाले लोग जो है ना। तो मैं अनूप तुमसे पूछना चाहूंगा कि आज के शो में और कौन कौन से पिटारे से आपने बातें निकाली हैं, मुझे बताइए जरा, दिन विशेष में और कौन सी बात सामने आ रही है।
2: बहुत कुछ बताने वाला हूं, पर मैं सोच रहा हूं आपका नाम लेके आपसे बात करूं कि नहीं, क्योंकि अभी तो हमने अपने लिसनर्स से पूछा आपका नाम बताएं। और देखिए, जैसे सूरज गर्म ही होता है, पानी गीला ही होता है, अंधेरा काला ही होता है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वैसे आपका नाम बताने की मुझे शायद से आज जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स है वही आपको अपनी फैमिली मानते हैं और शायद वही आपका नाम भी बता देंगे। व्हाट्सएप करिए। पर मैं बताता हूं कि देखिए, आज का दिन हमारा इतना खास है ना कि हमने परमाणु परीक्षण की बात की, पर उसके अलावा एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक गाना सुनेंगे हम।
1: परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई शो, मुंबई के मस्तानी, ये सेगमेंट चल रहा है और इस गाने के बाद कुछ और खास बातें आप सभी के संग साझा करेंगे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज के संग हम भी मदहोश हो जाते हैं।

0: अरे यार, मेरा भी मन ललचा रहा है कुछ बात करने के लिए, बट उससे पहले हमारे सारे श्रोताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने एकदम सही पहचाना यार। अनु, पता है आपका मनमित आरजे अमित आज सभी से बातें जो कर रहा है और हमारे सभी पहचानने वाले लोगों ने एकदम सटीक पहचाना, उसमें विजेंद्र कटोल जी, प्रणव शिंदे जी, दीपाली शिरोडकर, पंकज मोहोड़ जी, साथ ही हमारे वासुदेवन जी हैं बदलापुर से, प्रमोद कारखानिस, श्रेय राउत और दत्तात्रेय आदत्त विलापुर से, फिरोज सिगानपुरिया, प्रमोद चिंचोलकर, भास्कर बिसाले जी हैं करमाला से, अंजू जी अंधेरी से हैं, श्रीधर मोरसकर हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन, सुरेश बावकर, किशोर नाइक, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। अनूप, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी बात आप करने वाले थे यार इससे पहले?
1: अमित, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिसके कारण शायद से हमारे भारत में एक ऊर्जा, एक बिल्कुल खतरनाक एनर्जी भरी होती है, वो है बॉलीवुड और बॉलीवुड के गाने, फिल्में, जो हमारे जीवन का हिस्सा है।
0: सही बात है।
1: अमित, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि भारत में पहली बार कब तस्वीर दिखाई गई होगी कोई भी फिल्म की?
0: अरे यार, हर किसी को पता है यार, एक वो जमाना रहा जिस जमाने में फिल्में बोलती नहीं थी, है ना?
1: बिल्कुल, उसे कहते हैं साइलेंट फिल्म्स। आपने बिल्कुल बराबर पकड़ा। और अमित, आपको ये जानकर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कि आज ही के दिन 1912 यानी कि 100 से भी अधिक साल पहले मुंबई के गिरगांव में भारत की पहली फिल्म श्री पुंडलिक दिखाई गई थी। अच्छा। और इसके डायरेक्टर थे दादा साहेब तोरणे। अच्छा। और काफी धुंधली सी एक फिल्म थी, काफी बेहद तगड़ा प्रयास था। तो इस जो पहला प्रयास है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के किसी निर्देशक का, उसको एक बहुत बड़ा सलाम। और अमित, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि ये फिल्म सिर्फ 22

0: मिनट की थी, लेकिन इस 22 मिनट की फिल्म ने क्या जादू किया है।
1: यस, पक्का, क्यों नहीं, उस फिल्म पे जरूर बात होगी, मगर उससे पहले मुकेश जी की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से ये अंदाज़।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: 107.1 FM रेनबो पर मस्त मुंबई में मुंबई का मस्तान है बनकर मैं आपका मनमीत आरजे अमित और मेरे साथ हमारे नए दोस्त आरजे अनूप जुड़ चुके हैं और आज हम दोनों मिलकर आप सभी के लिए प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि बहुत सारे लोग जो है ना प्रोग्राम को सुनते वक्त अपने अपनी भी राय देते हैं। हाँ अनूप देखो इतने सारे ज्ञानी हैं ना हमारे सभी साथी, वैसे देखने जाए तो गूगल का सहारा लेते हुए हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा ज्ञान खोजता रहता है, बट हमारे कुछ श्रोता कहते हैं कि जो ज्ञान या इन्फोटेनमेंट हमें FM रेनबो देता है उसमें हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि जो बात अभी आपने कही ना वो लोगों को पसंद आ रही है। हाँ
1: क्या बात,
0: कौन सी फिल्म का नाम हम लेने वाले थे?
1: हम आज बात कर रहे हैं भारत की पहली फिल्म का जो प्रयास था, उस फिल्म का नाम था श्री पुंडलीक। और इस फिल्म के जो निर्देशक थे, जो हम बात कर रहे थे अमित, उनका नाम था दादा साहेब तोरणे। एक्चुअली उनका नाम है रामचंद्र गोपाल तोरणे, पर क्या है ना, जैसे ये भारत है यहाँ पे हम सब एक दूसरे को प्यार से एक नाम तो दे ही देते हैं, तो इन्होंने जो किया था वो एक बेहद अविस्मरणीय बात है, क्योंकि पहला प्रयास, देखिए पहला प्रयास जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, वही नींव रखता है आगे वाले कई प्रयासों के लिए। और जो श्री पुंडलिक फिल्म थी वो भी पहला ही एक ऐसा प्रयास है, भले ही वो 22 मिनट की हो। अब अमित आप बोलोगे कि 22 मिनट की कौन सी फिल्म होती है भाई अनूप, पर अमित ऐसा सोचिए कि उस जमाने में 22 मिनट भी अपने आप में एक पूरी फीचर लेंथ फिल्म के बराबर ही है। श्रोतागणों आप मेरी बात मानते हो कि नहीं, कि 22 मिनट उस जमाने में पूरी फीचर फिल्म होती थी? और अगर मैं बात करूं अमित, आपको बस बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का जो एक मुद्दा था, प्रिमाइस था, वो क्या था। ये फिल्म थी जो संत पुंडलीक थे, जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, उनके ऊपर बनाई गई थी। एक्चुअली एक नाटक है और नाटक को इन्होंने, जिसे हम कहते हैं अडेप्टेशन था, वो किया था। तो यही है पुंडलिक का सार।
0: काश आज के जमाने में वो सारी फिल्में हम सभी को देखने मिलते हैं ना।
1: बिल्कुल, कभी कभी मन करता है कि हम कहीं से तो फिल्में देख सकें।
0: खैर खैर कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा मन अगर कर रहा है वहां जाने का तो हम भी चले जाए किशोर कुमार की आवाज के साथ। इस गाने थोड़ी सी यॉडलिंग है, सुबह सुबह उठने के बाद जब हम कहीं ना कहीं रजाय से उठते रहते ना, तो ये गाना अगर मन ही मन में गुनगुनाए तो बहुत एनर्जी से भर सकता है।
1: यही तो चाहिए।
0: बने रहना FM रेनबो पर, आपका

0: क्या बात है यार, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है ना। एक तो मंडे है ना, मतलब वीकेंड के बाद फिर एक बार जब दिन शुरू हो जाता है तो ऐसे लगता है यार इस हफ्ते में क्या करूँ और क्या नहीं। बट अनु सच में बताऊँ, सुबह उठने नहीं होता यार।
1: मेरी भी सेम ही हालत है अमित। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो गर्मी बढ़ गई है ना, और मतलब मन करता है कि बाहर निकलोगे तो घर से बाहर कदम रखते ही दो कदम पर आप पूरे पसीना पसीने हो जाओगे।
0: हाँ वो तो है।
1: तो लगता है कि घर पर रहो या तो फिर कोई ऐसी जगह रहो जहाँ बिल्कुल हवा लगती रहे आपको। पर क्या करें, यही जीवन है, यही कोशिश है, जद्दोजहद हमारी रोज़ जारी रखनी तो हमें पड़ेगी ही, नहीं तो हमारे ऑडियंस कैसे हमारी आवाज़ सुन पाएंगे और कैसे जो है हम उनको नई नई बातें बता सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं।
0: मैं बताना चाहूँगा, देखो यार ऐसी गर्मी में हमारे सारे श्रोता बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले। और हाँ, ये गाना सुने, देखो आप

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: जी हाँ, मैं हूँ आरजे अनूप, मेरे साथ हैं आरजे अमित, हम लोग बने हुए हैं। अमित, आज मेरे को, अब मुझे एक बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि मैंने कहीं पर ये पढ़ा कि हमारी जो भारतीय दवाइयाँ हैं वो पूरी दुनिया में किस कदर हमें गौरवान्वित महसूस कर रही है। कितना फख्र हो रहा है मुझे आज,
3: पता है उसके पीछे रीजन क्या है अनूप?
2: क्या है?
3: क्योंकि भारत जो है ना, WHO को दवाइयाँ जो देता है
2: जी,
3: उसमें करीब 70% वैक्सीन भारत से जाती है।
2: क्या बात है। मैंने तो अमित ये भी कहीं पे पढ़ा कि जो अमेरिका में इस्तेमाल होती है ना जेनेरिक दवाइयां, उसमें 14% तो हिस्सा भारतीयों का है। और अमित देखिए, एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि हम सबके जो दोस्त हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वो भी वहां जाकर हमको बताते हैं कि कैसे भारत की दवाइयां और उत्पाद जो है वो यूज कर रहे हैं, और उनको कितना फख्र महसूस होता है और कितना उससे उनको अच्छा भी लगता है।
3: यस यस, हाल ही में मेरा UK जाना हुआ था, तो वहां के हमारे कुछ इंडियंस ने हमें एक बात बताया कि जब कोविड का काल आया था ना, उसके दौरान वैक्सीन मैत्री अभियान बना हुआ था, और अच्छा। उस अभियान के तहत 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भारत भेज रहा था।
2: जी कितनी बड़ी बात।
3: उसमें लंदन भी था, मतलब UK भी था। तो मुझे, मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत हमारे लिए सिर्फ एक संस्कृति या धरोहर वाला वो देश नहीं है, ये हमारी भारत माता हमारे लिए तो सबसे फायदेमंद है ही, क्योंकि इस मतलब पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं जो देश को माता कहता है, हम कहते हैं, है ना। और यही देश जब दुनिया के लिए भी माता बन के आता है तो ये ममता जता देता है दवाइयों के साथ।
2: बिल्कुल अमित, और हम तो औषधि जो है हमारी तो कितने पुराणों में भी लिखी गई है, और कैसे हम पूरे विश्व में सर्वोच्च स्तर पर इसे बांट रहे हैं और अपनी छाप छोड़ रहे हैं।
3: हाँ, इसका कारण यही है, हमने सिर्फ मैथ्स नहीं दिया, शून्य नहीं दिया, बल्कि भारत की ही देन है दुनिया को आयुर्वेद की।
2: यस।

0: क्या बात है यार, ये भारत देश जो सारी दुनिया को मदद करता है ना, इसलिए तो सारे देश कहते हैं कि तेरे जैसा यार कहाँ है ना।
1: बिल्कुल अमित, और आज अभी हम दवाइयों की ही बात कर रहे थे, औषधि की, तो एक बात तो बतानी बनती है कि आज जो है 18 मई, वो है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। मतलब सोचिए, एड्स कितनी भयानक महामारी और बन चुकी थी दुनिया में, और आज का दिन यह सभी उन वैज्ञानिकों, डॉक्टर और जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो एड्स की लड़ाई में साथ दे रहे हैं और बीमारी की वैक्सीन खोजने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो ये हमको आज का दिन याद दिलाता है कि एड्स के बारे में जो अवेयरनेस है वही सबसे बड़ा बचाव है। और इन लोगों को हमारा सलाम, और सभी को ये बताना चाहेंगे कि अफवाहों से दूर रहे और जानकारी बढ़ाए,
0: ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल ना दवाइयां हर जगह मिलती हैं, बट अवेयरनेस की दवाई कहीं नहीं मिलती है ना।
1: जी हाँ, सही बात है।
0: तो एक दूसरे को अवेयर करते रहिए, और साथ ही साथ अपने मन को भी समझाइए यार। दिल पे हाथ रखे, कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। शायद आप बीमारी से दूर जाओगे, और फिर पता चलेगा यार इस दवा से बेहतर तो दोस्तों की दवा होती है। क्या वो अगर साथ में आ जाए तो बात बन जाए, है ना। इसलिए रोते रहने से बेहतर है चेहरे पर प्यारे से मुस्कुराहट रखो, क्योंकि 2 सेकंड की मुस्कान से हमारी फोटो अच्छी आ सकती है, तो फिर जिंदगी भर मुस्कुराने से जिंदगी जरूर संवर सकती है, है ना। बने रहना आपका मनमित आरजे अमित और आरजे अनूप के संग FM रेनबो पर, मस्त मुंबई में FM रेनबो में, क्योंकि वी आर म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी का एफएम रेनबो पर यानी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका मनमीत आरजे अमित के संग और आरजे अनुप के संग मस्त मुंबई शो। मुंबई के मस्ताने इस सेगमेंट में मुझे आज बात करनी है क्रिकेट से जुड़ी। एक ऐसा लड़का यार इतनी कम उम्र में कैसे इतने बड़े बड़े शॉट खेलता है, मैं तो चौंक गया हूँ यार अनुप देख के कि आईपीएल एक तरफ इतने सारे नए खिलाड़ियों को हम सभी के सामने ला रहा है और फिर पता चलता है कि यार क्रिकेट के खेल में सिर्फ 15 लोगों को मौका मिलता है, बराबर?
1: बिल्कुल।
0: तो इतने सारे टैलेंटेड बंदे हैं हमारे देश में।
1: बिल्कुल, और मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो। क्या मैं नाम ले लूं?
0: क्यों नहीं,
1: आप बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। देखिए, और आपने कहा कि 15 लोगों को ही मौका मिलता है और 15-16 साल का ही ये बंदा जो है वो आके ऐसी तबाही मचा रहा है। मतलब अगर हम इसे सही मायनों में कहें तो ये आज की डेट में भारतीय क्रिकेट या पूरे विश्व क्रिकेट का धुरंधर बन चुका है।
0: परफेक्ट।
1: और पर अमित, मुझे एक चीज से थोड़ी तकलीफ हो रही है इस आईपीएल में दोस्त।
0: क्यों?
1: इस आईपीएल में एक्चुअली हमने देखा है कि हर आईपीएल में क्रिकेट का स्तर इतना बढ़ता जा रहा है, पर इस आईपीएल में ना जाने क्यों इतने कैचेस छूट रहे हैं। आपने देखे हैं क्या कुछ छूटे हुए? और समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। क्या उन्हें भी काफी गर्मी लग रही है, हाथ में पसीना आ रहा है, या फिर जो पूरा फोकस है वो कहीं और जा रहा है, या लाइटें आंखों में आ रही है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि आईपीएल में हमने इतने शानदार कैचेस देखे और इसी आईपीएल में अपने इतने शानदार कैच ड्रॉप होते हुए देखे कि समझ नहीं आ रहा कि क्या रिएक्शन दे।
0: वो कहते ना कैच इज विन मैच,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो मैच अगर जीतनी है तो भाई खिलाड़ियों आपके खेल पर हम तो दिल हार ही बैठे हैं, बट ऐसे छक्के लगाओ चौके लगाओ कि हमारा भी ध्यान आप खींच ले, और साथ ही साथ ऐसे कैच पकड़ो कि आप डाउन बनकर अपने टीम को जिता दे।
1: क्या बात।

0: फिल्मों में डॉन बने हमारे इस किरदार को हम कभी भूल नहीं सकते अमिताभ जी को। बट कुछ एक्टर्स ऐसे हैं ना जिन्होंने अपने अभिनय के साथ हर किसी का दिल बहला दिया अनूप, बट कुछ लोग हम सभी को बहुत जल्दी छोड़कर चले गए यार। आज की तारीख में जब हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं तब एक नाम सामने आता है जो आज के दिन हमें छोड़ चला गया। नाम है जानी मानी अभिनेत्री रीमा लागू।
1: जी अमित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, मेरा तो पहला परिचय उनसे हुआ था जब मैंने प्यार किया देखी थी, और उसके बाद से उन्हें कई फिल्मों में हमने देखा। और इतनी प्यारी अभिनेत्री वो थी, और कितनी सुंदर मुस्कान, और उनके अभिनय की तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है।
0: अब आज 90 का दशक हो या 21वीं सदी में भी उनकी कई सारी फिल्में आज भी याद आ जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: मुझे तो मैंने प्यार किया या कयामत से कयामत तक, साजन या फिर गुमराह, जय किशन, इन जैसी फिल्मों के साथ उनका अभिनय, उनकी वो सादगी, उनकी डायलॉग डिलीवरी और वो प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा।
1: बिल्कुल,
0: मुझे लगता है कि आज उन्हें याद करते हुए हम आपके आइकॉन का ये गाना हम जरूर लोगों को सुनाएं।
1: क्या बात है, बिल्कुल।
0: Listen this music. We can connect with this music directly to Reema Lagu
1: ji. मैं पहुंचा दिया आपने।
0: रीमा जी, आपकी याद सदा हमारे दिलों में रहेगी। मैं आरजे अमित और आज अनूप आप सभी से फिलहाल कुछ पलों के लिए विदा ले रहे हैं। ठीक 10 बजे आप समाचार सुनेंगे और समाचार के उस पार नमस्ते भारत में है प्रीत जहां की रीत सदा इस सेगमेंट में बात होगी एक और सब्जेक्ट पर। बने रहना आपका मन मित्र आरजे अमित के संग FM रेनबो पर।

हमारे साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मस्त मुंबई में आपने जो साथ निभाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रघुनाथ खानोकर, फिरोज सिगान पोरिया, आर्यन सोमुंशी, प्रमोद चिंचोलकर, श्रेय राहू, दीपाली शिरोडकर, कुशल डावरे, बाबा दादर से हैं प्रणव शिंदे, मनु मनोज, स्नेहा वर्ली से वैदेही, रजनीकांत पाटिल, फिरोज सिगान पोरिया, पंकज मोहड़ और अजित पवार अलीबाग से हैं, महेश भाटकर जी हैं और वासुदेवन बदलापुर से, प्रमोद कारखानी, दत्तात्रेय आदत विलापुर से, भास्कर भिसाले, अंजू जी अंधेरी से, श्रीधर मोरजकर, प्रदीप अनंत कृष्णन और सुरेश पावकर, किशोर नायक, सभी से हम कहना चाहेंगे हम साथ साथ हैं। बने रहना FM Rainbow Park।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कल स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य अधिकारियों से बातचीत करी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। समाचार में आगे, कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। आज शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। समाचार में आगे, पश्चिमी एशिया में महीनों से जारी अशांति के बाद यूरेनियम भंडार, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध से संबंधित नुकसान के मुआवजे को लेकर वार्ता ठप होने के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को नई चेतावनी जारी करने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक तनाव बहुत बढ़ गया है। एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि समय बीत रहा है। समाचारों के अंत में खबर है खेल जगत से जुड़ी हुई। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कल रात राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। एक अन्य मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार दोस्तों, नमस्ते भारत में। मैं आपका मनमीत आरजे अमित और मेरा दोस्त मेरा को होस्ट आरजे अनूप आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आज है प्री जहांगीरी सदाई सेगमेंट होती है और मंडे के दिन इसमें हम आपको ले जाएंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की ओर जो सब्जेक्ट आपको आज के दिन से जोड़े रखता है।
2: क्या है वो सब्जेक्ट, हमें कुछ तो बताइए।
1: अरे यार मुझे ऐसे लगता है ना कि हमारे पास अगर कोई अच्छी चीज़ हो ना तो कहीं ना कहीं हम उसे संग्रहित करके रखते हैं, जो हमें हमें लगता है कि इसे हमें गंवाना नहीं है, है ना। बचपन में पता है कंपास में हमने कुछ पेंसिल कुछ रबर संजोए रखे थे। आज भी अगर बचपन की यादें खोजनी हो तो हम जाते हैं कबर्ड खोलते हैं और अलमारी के भीतर वो कंपास में से जब पुराना वाला वो स्मेल वाला इरेजर हाथों में आ जाता है तो पता चलता है इसे हमने संग्रहित किया, इसलिए वो आज हमारे साथ है।
2: मुझे लग रहा है कि आपकी बातों में एक हिंट है जो मुझे शायद पकड़ लेनी चाहिए। और मैं तो ये श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि यादों का संग्रहण, जो संग्रहित करने वाली बातें कर रहे हैं, तो ये किस बारे में आज बात करने वाले हैं? अगर आप ये गैस कर पाए हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है उस चीज के लिए।
1: 8657661071 पर बताइए कि आज हम कौन से सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं।

0: अनूप, हमारे सारे श्रोता है ना, इतने समझदार है ना, तुरंत अपना जवाब दे देते हैं 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर। जिन जिन लोगों ने मैसेजेस किए ना, उनमें सबसे पहला सही जवाब दिया है महेश बोहरा जी ने, अजमेर राजस्थान से हमें मैसेज करते हैं, बताते हैं आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे है और भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम कोलकाता में है जो कि 1814 में बना था। आप देखो इतनी सारी जानकारी हर कोई रखता है अपने साथ यार।
1: अब मैं सही बताऊं तो ये जानकारी मुझे भी नहीं पता थी।
0: अच्छा, क्या बात कर रहे हो। अरे यार, मुझे ऐसे लगता है ना यार, आजकल के ज़माने में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना हो तो हमें कभी ना कभी एक बार किसी ना किसी म्यूजियम को विजिट करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और अभी जब आप ये बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए शायद से किताबें

0: जो है वो तो कोई इंसान ही लिख रहा है, तो वो शायद से वो अपने हिसाब से लिख सकता है, तो किताबें जो है वो चार किताबें अलग बात कर सकती है, पर जो हम म्यूजियम में चीजें देखते हैं, जो एक संग्रहालय की वस्तुएं होती है, वो शायद जो है वो अपने आप में काफी सच्चाई समेटे हुए होती है उस जमाने की।
1: इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि पढ़ते वक्त हम सोचते हैं और उसे देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे उसे विजुअलाइज करते हैं, बराबर ना?
0: बिल्कुल।
1: बट जब देखते हैं तब पता चलता है अच्छा ये ऐसे दिखता है, बराबर। मेरे पहचान वाले हमारे साथी हैं जो डॉक्टर हैं पेशे से, उनकी पोती उन्हें पूछती है कि हमारे हिस्ट्री के बुक में किला इतना सा दिखाया गया है ना, तो ये कैसा रहता है किला? तो उन्होंने दूसरे दिन डिस्पेंसरी बंद रखी और अपनी पोती को लेके चले गए रायगढ़ किले पर, और उन्हें बतलाया कि किला इतना बड़ा होता है, ऐसे होता है। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा तब उन्हें पता चला कि अच्छा किला मतलब ये चीज होती है। इसीलिए मैं कहूंगा संग्रहालय की बातें जब हम करें तो उनके बारे में हम बातें तो जरूर करेंगे, मगर बातों के साथ साथ अगर आप कभी विजिट करो तो पता चले एक पल के लिए संग्रहालयों के लिए कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है, चाहे मूर्तियां हो, किताबें हो, पत्थर हो, हर चीज कुछ ना कुछ बोलती है।
0: और कुछ नहीं तो अमित यही हमें अच्छा लगेगा कि हम कितने समृद्ध संस्कृति का हिस्सा है।
1: सही बात है। इसी संस्कृति पर आज बातें होंगी नमस्ते भारत में। बने रहना FM रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग। और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: EKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। नमस्ते भारत में आज हम बातें कर रहे हैं संग्रहालय से जुड़ी हुई। वैसे कभी कभी लगता है ना यार अनूप, हम फैमिली के साथ घूमने चले जाते हैं, पिक्चर देखने चले जाते हैं, है ना, अपने लिए जीते हैं, बट कभी कभी अतीत की कुछ इन कहानियों के लिए जीना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: क्यों? क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक संप्रभुता का प्रमाण जो है ना। अब देखो, जिसने हजारों साल के विदेशी आक्रमणों के बाद भी भारत की मूल आत्मा और सनातन पहचान को जिंदा रखा है, वही तो है ये सारे संग्रहालय। कभी पुस्तकों से बातें करते हैं, कभी पत्थरों से, कभी मूर्तियों से, तो कभी कई अन्य चीजों से। मुझे लगता है ना, हमारी सदियों पुरानी सभ्यता और गौरवशाली इतिहास को सहज कर रखने वाले भारत के जितने सारे संग्रहालय हैं, म्यूजियम्स हैं, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत के जीवंत दस्तावेज हैं, और ये हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखने का सबसे बेहतरीन जरिया है।
1: बिल्कुल अमित। और एक बात मुझे याद आ रही है, अभी हाल फिलहाल ही मैं रत्नागिरी गया था, वहां पर एक टिबेट म्यूजियम है। आप सोचिए कि जहां पे टिबेट के राजा से जुड़ी चीजें और उनकी ये कहानी है, सोचिए रत्नागिरी जो महाराष्ट्र के कोकण में आता है, वहां पे टिबेट का एक म्यूजियम है। सोचिए कितनी अनोखी बात है। तो मुद्दा यह है कि देखिए, किताबों का इतिहास बदला जा सकता है, लेकिन संग्रहालयों में रखी कलाकृतियां कभी झूठ नहीं बोलती। आप देखिए, हड़प्पा की खुदाई से मिले अवशेष जो है वहां, उसकी बात कर ले या तो स्वतंत्रता संग्राम के अपने हथियारों तक, ये म्यूजियम्स ही तो हैं जो हमारे गौरव और संघर्ष के गवाह हैं।
0: चलो, इस पर बातें होती रहेंगी। मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं से भी पूछे कि भाई, आपको ऐसे कौन कौन से म्यूजियम्स के नाम पता है जो भारत में हैं, हमें बताइए 8657-66-1071 पर।

हमारे बहुत सारे श्रोता है ना अनूप, अपने अपने जवाब बांटने लगे। प्रमोद चिंचोलकर कहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिन जो है वो देखने के लिए उन्होंने इसी बहाने सातारा के एक संग्रहालय को विजिट किया था। वहाँ पे भी कोई संग्रहालय है। और प्रकाश शिंदे जी कहते हैं कि हमने भारत के कई सारे म्यूजियम्स में विजिट ज़रूर किया है, जिसमें म्यूजिकल क्लॉक और वेल्ड रेबिका की मूर्ति जो दुनिया भर में मशहूर है वो भी उन्होंने देखी हुई है। तेलंगाना में स्थित ये म्यूजियम है। और हमारे कुछ और श्रोता है, प्रयाग अलाहाबाद म्यूजियम जो है प्रयाग में, उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, वो भी देखा है किसी ने। विजेंद्र घटोल जी भी बताते हैं कि हमने एक ऐसा म्यूजियम देखा है जो पिछले कई सालों से काफ़ी मशहूर है, अलीबाग का। और प्रणव शिंदे जी हैं वो बताते हैं कि इससे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, जो कि

छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है। तो आज इनके बारे में हम इन डिटेल बातें जरूर करेंगे, मगर उससे पहले एक गाना मैं सुनाना चाहूंगा आप सभी को। चलिए सुखिंदर सिंह की आवाज में इस गाने को सुनते हैं और इस गाने के बाद एक कमर्शियल ब्रेक के साथ और कुछ बातें सुनने के लिए बने रहना FM रेनबो पर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज नमस्ते भारत में मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित और मेरे साथ को होस्ट आरजे अनूप जुड़ा हुआ है, जो कि आज आप सभी को एंटरटेन कराते कराते कुछ गानों की सैर करा रहे हैं, कुछ बातों की सैर करा रहे हैं और उसके साथ कुछ म्यूजियम्स की ओर भी आपको ले जा रहे हैं। चलो आज विदाउट फ्लाइट टिकट हम जाते हैं कोलकाता।
1: क्या बात,
0: कोलकाता के म्यूजियम के बारे में कुछ बातें जरूर आपसे साझा करना चाहेंगे।
1: उससे पहले अमित, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ जो है पिछले हफ्ते की, जो हम सब लोगों ने जानी है, वो ये है कि नेदरलैंड, हाँ नेदरलैंड जो सात समंदर पार है, वहां से 11वीं शताब्दी के कुछ चोला एरा, चोल वंश जिसे हम कहते हैं, वहां से कुछ जो है तांबे के पत्र, जिन्हें हम कॉपर प्लेट्स भी कहते हैं, वो भारत वापस लिए जाएंगे। और इन तांबे के जो पत्र है, इस पे कुछ कुछ पे तमिल और कुछ पे हिंदी है। सोचिए, हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत जो हम वापस ला रहे हैं, इससे हमें कितने गर्व की अनुभूति होगी। सोचिए, 11वीं शताब्दी की चीज अगर हम वापस ला रहे हैं अपने देश में, इससे हमें अपनी ही संस्कृति को और समझने और करीब से देखने में कितनी खूबसूरती मिलेगी।
0: सही बात है, विदेश में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भवानी तलवार है, वाघ नख जिसे हम कहते हैं, वो भी बाहर रही। बट कुछ महीनों पहले की बात है, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र सरकार ने वो भी महाराष्ट्र में लाए थे और अभी वो हम महाराष्ट्र में देख सकते हैं। तो हमें खुशी इस बात की होती है यार, ये सब कुछ क्यों संजोया जाता है, वो हमारी धरोहर है इसीलिए वो संजोया जाता है। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर धरोहर को ज़िंदा रखना है तो उसे संजोना, उसे संग्रहित करना काफ़ी ज़रूरी बनता है। आइए एक गाना सुनते हैं और गानों के इस पार कुछ और म्यूजियम्स के बारे में ज़रूर जानेंगे। बने रहना नमस्ते भारत में आपका मनमीत आरजे अमित के संग एफएम रेनबो पर।

0: क्या बात है यार, देखते देखते 10:38 हो गए। अरे पता ही नहीं चला यार कैसे समय बीता है ना अनु।
1: बिल्कुल
0: मैं आज, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि हमारे सारे लोगों को अगर हम कोलकाता ले जाए तो पता चले कि यार वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर को हमारे सारे के सारे म्यूजियम्स जो है ना वो काफी मजबूत कर रहे हैं, और उसमें कोलकाता का भी भारतीय संग्रहालय है। ये ऐसी धरोहर हैं जहां विदेशी पर्यटकों को हमारी समृद्ध विरासत से रूबरू कराकर हम वैश्विक कूटनीति में अदृश्य योगदान देते हुए जरूर खुद को देख सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: हमारे देश के ऐसे कई सारे म्यूजियम्स हैं। आप देखो, अगर कोलकाता के इंडियन म्यूजिक के अगर म्यूजियम की अगर बात करें तो वहां पे है ना मिस्टर की मम्मी रखी हुई है। अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, या फिर यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हो। कई फॉसिल्स हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि समय के कितने गहरे सागर को पार करके आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं।
1: क्या बात है, हमें तो और
0: हाँ
1: सोचिए कि आप कह रहे हो मिस्र की मम्मी, जो हम केवल किताबों में ही पढ़ते हैं। अगर सोचिए हम जब अपने बच्चों अपने दोस्तों से बात करें और कभी हम बोले कि अगर हम कहाँ देख सकते हैं ये भारत में, तो हम आज आपके द्वारा ये जान पाए हैं कि हम कोलकाता में इंडियन म्यूजियम में वो देख सकते हैं। और सोचिए कितना पुराना म्यूजियम है जो 1814 में बनाया है।
0: अब देखो कोलकाता की अगर बात हो और बंगाली की वो मिठास अगर गानों के जरिए ना आए तो
1: हाय हाय
0: मजा नहीं है, है ना।
1: हाय हाय।
0: चलो हम चाहते हैं, अमिताभ बच्चन ने गाना गाया कहानी फिल्म में, पता है पूरा बांग्ला भाषा में, अकेला चाल और
1: मेरा फेवरेट गाना है।
0: हाँ, बट हम अकेले नहीं चल रहे हैं, हम दोनों साथ में मिलके चल रहे हैं। मैं हूँ आरजे अमित और हमारे संग है आरजे अनूप। तो हम चाहेंगे हमारे संग बने रहे ठीक 11 बजे तक।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: के हुनर और विलासिता की गवाह बनी वो मूरत अगर हम देखें तो हमें हैदराबाद का सालार जंग म्यूजियम जो है ना वो याद आ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: वहाँ जाने के बाद हमें इंडो सहरासिनिक वास्तुकला भी देखने मिलती है।
1: अच्छा।
0: कला और इतिहास को कैसे सहजा जाता है ये भी देखने मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: मुझे लगता है ना म्यूजियम सिर्फ प्राचीन राजाओं के नहीं होते, वे हमारे संघर्ष और लोकतंत्र के मंदिर है ना। दिल्ली का जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, लाल किले के भीतर जो क्रांति मंदिर बना हुआ है, आजाद भारत की उस यात्रा और उन अनगिनत बलिदानों को दर्शा रहा है जिन्होंने हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया है। इसलिए मुझे लगता है कि संग्रहालय जो है वो अतीत और भविष्य के बीच एक ऐसा वैचारिक पुल है जो हमें आज के डिजिटल युग की ओर बतला देता है कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तकनीक विकसित हुई है, मगर ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो उस संग्रहालय को सोशल मीडिया पर संग्रहित कर सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल, देखिए जो देखने की अनुभूति होती है वो अपने आप में नायाब होती है और वो कोई किताब हमें नहीं पढ़ा सकती। तो आज हम अपने सारे श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि देखिए आज तो वीकडे है, शायद आपका दिन व्यस्त हो, पर हमारा सबका परिवार होता है, हमने काफ़ी किताबों में चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकालिए। आज जो हमने आपको बताया कि वर्ल्ड म्यूजियम डे है और संग्रहालयों की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक संग्रहालय आप जाइए और फिर हमें डेफिनेटली बताइए कि आपकी अनुभूति कैसी हुई।
0: मैं तो कहूँगा युवा पीढ़ी को ये समझना काफ़ी ज़रूरी है कि आधुनिक तकनीक का हम आनंद ले रहे हैं मगर उनकी जड़ें प्राचीन भारत के खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान और वास्तुकला में छिपी हुई हैं। अब हम बातें करते करते ही कई सारे म्यूजियम्स में अगर घूम के आए हैं तो हम चाहते हैं कुछ गानों की भी सैर कराएं, है ना। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ ये सफ़र हम आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं कुछ ही पलों में। बने रहना नमस्ते भारत में FM रेनबो पर।

0: क्या सदाबहार गाना है यार, इस फ्लूट के साथ और इस धुन के साथ मन भी कहीं ना कहीं बड़ा शांत हो जाता है ना। और मैं चाहता हूँ कि अब हम भी थोड़े से शांत हो जाए, क्योंकि हमारा समय खत्म होने आया है, 11 बजने के लिए बस 8 ही मिनट बचे हैं, और हमारी नेक्स्ट आरजे सोनाली भी स्टूडियो में आई हैं। तो एक साथ एक स्टूडियो में पहली बार मैं 3 आरजेस देख रहा हूँ,
1: क्या बात है।
0: अनूप कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा लगा, और अमित सही बताऊं तो जो हमारे श्रोतागण है उनके मैसेजेस पढ़ के इतना अच्छा लग रहा है कि कितना प्यार दे रहे हैं, और साथ ही साथ हमारी सारी बातों में हमसे जुड़ भी रहे हैं। कितने सारे म्यूजियम्स के बारे में आज इन्होंने हम तक जानकारी पहुंचाई है, डेफिनेटली इसकी एक लिस्ट बनाऊंगा और मैं वहां विजिट भी करूंगा।
0: यस यस, विजिट तो जरूर करेंगे, बट मैं सोनाली से पूछना चाहूंगा, सोनाली कसा काय वाटते?
3: एकदम छान छान आणि खूपच गरम गरम वाटते।
0: गर्मी बहुत बड़ी हुई यार। यस, बट कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो हमें थोड़ी सी राहत दिला देते हैं, तो हम चाहेंगे उन्हीं गानों के साथ आप ये मूड बरकरार रखेंगे। ब्रेक फ्री में 11 बजे के न्यूज के बाद बने रहना सोनाली के संग। फिलहाल मुझे और अनूप को, यानी आरजे अमित और आरजे अनूप को दीजिए इजाजत, जल्दी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 11 बज रहे समय जानने के इस घंटे के समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से बातचीत करेंगे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्नपत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। आगे है, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्यवाही अस्वीकार्य है। भारत ने संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव को समाप्त करने का आह्वान किया है। और अंत में, भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1982 में नई दिल्ली में हुए एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के बाद भारत ने दूसरी बार इसकी मेजबानी की थी। इसी के साथ समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 एफएम रेनबो। अगला प्रोग्राम है ब्रेक फ्री। ग्यारह बजकर 2 मिनट, गुड मॉर्निंग कह रही हूँ मैं सोनाली आप सभी को। और हफ्ते की शुरुआत जब हम साथ साथ करते हैं तो जो गानों की अंदाज है वो इस तरह का हो, तो शुरुआत हम इस तरह से करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी बातें होने वाली है। और सच कहूँ तो आज का जो हमारा थॉट है ना, वो हमारे प्रोग्राम के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो, गुड मॉर्निंग।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए 5 मंथ कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जतिन ललित ने कंपोज किया हुआ जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ अभिजीत और अलका जी की आवाज फिल्म चलते चलते आप सबके लिए चलते चलते ये गाना प्ले किया। 11:21 हो रहे हैं, ब्रेक फ्री प्रोग्राम चल रहा है। हमेशा की तरह आपसे एक और एक बात जानना चाहूंगी, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बताइए जरूर कि आप कहाँ से सुन रहे हैं। जैसे मुझे अभी धनंजय का नवी मुंबई से मैसेज आया, उन्होंने कहा कि वो पुणे से मुंबई की तरफ आ रहे हैं और आते समय 107.1 FM रेनबो सुनते हुए आ रहे हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया अपने सफर का साथी हमें बनाने के लिए। और आई एम श्योर कि ये गर्मी भले कितना भी सफरिंग दे, लेकिन म्यूजिक हमेशा एक कूलिंग इफेक्ट ही देता रहता है। अब चूंकि ब्रेक फ्री प्रोग्राम है, तो अब जब हम रेडियो की बात कर रहे हैं कि रेडियो आपके साथ चलते हुए आ रहा है, इमेजिन करिए कि कई सालों पहले जब ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, तो कम्युनिकेशन का जो एक जरिया था, या तो बातें कर लो या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी जिसकी वजह से कि खबरें एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती थी। लेकिन जब रेडियो आया और दुनिया जहान की खबरें हम तक पहुंचने लगी, तो सोचिए कि इंसान के दिलो दिमाग में वो कितना बड़ा एक ब्रेक फ्री मोमेंट रहा होगा कि भाई अब हमें कहीं की भी खबर सुनने को किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ रेडियो, तब तो वो ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, अब तो हमारे मोबाइल में ही रेडियो है। तो एक कितना एक कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में हमारे आसपास ही हम कितने सारे ब्रेक फ्री मोमेंट्स आए दिन या तो खुद आजमाते रहते हैं या हम अपनी ही बातों से खुद को ब्रेक फ्री करते रहते हैं। आज इन्हीं बातों के साथ होगा अपना ये ब्रेक फ्री प्रोग्राम। बताइएगा कहाँ से सुन रहे हैं आप हमें। और अगले दो गाने मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, विच इज थोड़ा सा कहते हैं ना नॉन फिल्मी सा टच देते हैं इस शो को। आई एम श्योर ये गाना आप सुनेंगे तो आपको ध्यान जरूर आ जाएगा, एक समय का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सा गाना है ये। सुनिए, बने रहिए हमारे साथ।

मैंने आपसे पूछा कि कहाँ से सुन रहे हैं, ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के मैसेज आए। तो जिनके आए मैसेज उनके नाम बता देती हूँ। अंजलि पाटिल जी का मैसेज आया है, साथ ही साथ में मुझे मैसेज आया है निर्मला स्वाति शरद का अहिल्या नगर से, जो अपने खेतों में काम करते हुए मोबाइल पर सुन रहे हैं। मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था ना कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक कितनी बड़ी बात होती है कि आप कहीं भी रहे म्यूज़िक आपके साथ रहता है। देन विजेंद्र गटोल का अकोला से मैसेज आया है, साथ ही साथ में नागेश का पोलैंड से, यूरोप से मैसेज आया है, उन्होंने अपना काम शुरू किया है सुबह 7 बजे की शिफ्ट में। साथ ही साथ में विठल मुंगसे का मैसेज आया है, जो भी खेतों में काम करते हुए अहिल्यानगर से अपना मैसेज ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। शुभलक्ष्मी जी का मैसेज आया है, और साथ ही साथ पंकज मोहड़ का अमरावती से, अशोक पाटिल का वर्ली से, राकेश माथुर जी का मैसेज आया है, संदीप काले का नांदेड़ से मैसेज आया है, अविनाश मौर्य का जौनपुर से, महेश शेट्टी जी का कुरला से मैसेज आया है। तो ये तो कुछ मैसेजेस थे जो हम तक पहुंचे हैं, और महेश बोहरा जी का अजमेर राजस्थान से मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के प्यार के लिए। चलिए एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर लौट कर आते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

0: साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

11:35 अदनान सामी की आवाज़ थी और लिफ्ट करा दे वाकई। अब तो इतनी गर्मी हो गई है कि ऊपर वाले ऐसा लगता है कि थोड़ी बारिश हो जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए। ऊपर वाले से कुछ ना कुछ डिमांड आमतौर पे हम करते ही रहते हैं। और सच कहूँ तो एक अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ब्रेक फ्री मोमेंट मुझे हाल ही में रियलाइज़ हुआ रादर कि हम खुल के कई बार बात भी नहीं कर पाते हैं। कई बार जब हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हो

होते हैं या खुद से भी जब हम कई बार अपने आप के साथ बात कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना पूरी तरह से समर्पित होके अपने आप को भी स्वीकार कर पाना ये बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है, क्योंकि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो फिर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी आ जाती है। आमतौर पर हमें आदत होती है कि कुछ अच्छा अच्छा ही देखें, खुद के अंदर की बुराई तलाश करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसा कर पाए तो वो एक अपने आप में बड़ा ही खास ब्रेक फ्री मोमेंट होता है। साथ ही साथ में अभी देखिए बारिश, अब कह रहे हैं मानसून जून फर्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए, तो बारिश आ जाएगी। बारिश आते से मुंबई के आसपास के जो कहते हैं ना ट्रैवल डेस्टिनेशन, वन डे पिकनिक, ये पता नहीं क्या क्या क्या क्या शुरू हो जाएगा। और आमतौर पर अब देखिए अब कि अब लोग हैं ना बहुत तरह से सोलो ट्रैवल करना भी पसंद करने लगे हैं। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब कोई साथ नहीं है तो कैसे बाहर जाएंगे, कैसे करेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, पर अब लोगों को पसंद आता है, कई बार लोग अपनी खुद की कंपनी भी एंजॉय करने लगे हैं। 11:37 हुए हैं, बताइए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो किस तरह से ट्रैवल करना पसंद करते हैं? सोलो ट्रैवल करते हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, या दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगता है? बताइएगा मुझे। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। छोटी छोटी सी बातें होती है जिसमें हम एक दूसरे के साथ जब साझा करते हैं इन सभी बातों को तो कहीं ना कहीं बातचीत आगे बढ़ती रहती है। बताइएगा, तब तक ये गाना प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए, सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: म्यूजिकली योर्स, और वाकई कहते हैं कि सफ़र का साथी भी होता है म्यूज़िक, और कुछ इसी तरह के अंदाज में मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं। वैदेही ने बताया कि फ़िलहाल तो वो पुदुचेरी में हैं और म्यूज़िक उनके

साथ है, और उन्हें कहते हैं ना कि म्यूजिक के साथ घूमना अच्छा लगता है। साथ ही साथ पंकज जी का मैसेज आया है, उन्होंने बताया कि सोलो ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। श्रेय राउत का मैसेज आया है टिगरे पाड़ा से कि फैमिली और दोस्तों के साथ जब जाते हैं तब अच्छा लगता है। साथ ही साथ संजय दर्शन जी का मैसेज आया, संजय जी का मैसेज आया रादर, बहुत समय के बाद इनका मैसेज आया, अच्छा लगा क्योंकि बहुत समय तक कहते हैं ना एक रेगुलर लिसनर

आए हैं जो वाकई बताते हैं कि किस तरह से घूमना फिरना अच्छा लगता है। अब तो जब हम ब्रेक फ्री की बात करते हैं तो सच कहूँ ना तो एक ज़माना हुआ करता था जब लड़कियाँ अकेली कैसे बाहर जाएंगी वगैरह वाली बातें होती थी, और अब जब हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि लड़कियों के ही सोलो ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। लड़कियों के अलग अलग लड़कियाँ अपना एक ग्रुप बनाकर, मतलब ग्रुप ही होता है लेकिन लड़कियां अकेली अकेली बाहर निकलने लगी है। अलग अलग ब्रेक फ्री मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के। अपने आप को खुद से एक्सप्रेस कर पाना भी एक ब्रेक फ्री मोमेंट होता है। दोस्त, अब जब हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो अपने एक इनहिबिशन से बाहर निकल के, अपने एक कहते ना अपने खुद के दायरे से बाहर निकल के दोस्त बनाते हैं। तो कुछ बातें आपके साथ इस ब्रेक फ्री प्रोग्राम में शेयर की, बहुत अच्छा लगा, आपके भी रिप्लाई आए हैं। चलिए दो थोड़े से पुराने गाने प्ले करती हूँ, पुराने मतलब बहुत पुराने नहीं बाबा, थोड़े से कहते हैं ना कि एक जब हम थोड़ी सी नई नई फिल्मों की बात करते हैं, नई नई फिल्मों के गाने प्ले करता है तो एक हल्का सा एक ठंडी हवा के झोंके की तरह सुनिए इस गाने को।

मतलब हालांकि ये बहुत ही प्यार भरे अल्फाज हैं, लेकिन आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि पांव ज़मीन पर नहीं पड़ते। कहीं भी जाओ आप एक अपने आप में परेशान से रहते हैं। 11:53 हो चुके हैं और अब हम इस ब्रेक फ्री को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक और एक पुराना गाना, मतलब एक 80s का गाना प्ले करूँगी और फिर आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम के साथ। 12 बजे समाचारों के बाद होगा प्रोग्राम म्यूज़िक कैफ़े, उसमें भी कुछ अलग अंदाज़ की बातें, आपका साथ बना रहेगा इसी उम्मीद के साथ। अगला गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहेगा 107.1 FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 12:29 हुए हैं समय जानने के इस घंटे के समाचार। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सिंह ने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। आगे है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए संयुक्त आतंक रोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मॉक ड्रिल उप महानिरीक्षक और विमानन सुरक्षा समूह के मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी तथा CISF के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किए गए। और अंत में, निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 17 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसमें 16 सीटें स्थानीय इकाइयों से निर्वाचित होने वाली सीटें हैं तथा एक चंद्रशेखर बावनकुए विधानसभा में चुने जाने के बाद खाली हुई है।

चुनाव की अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी। नामांकन 1 जून तक दाखिल किए जाएंगे। मतदान 18 जून को होगा और मतगणना 22 जून को होगी। इसी के साथ समाचार का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आप सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो।

अलका जी और उदित जी की आवाज़ में ये गाना ऐ मेरे हम सफ़र कयामत से कयामत तक, जितनी बार भी ये गाना सुनो हमेशा कहते हैं कि अपने ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए ये मेलेडी बनी हुई हो। और आमिर खान और जूही चावला की जो केमिस्ट्री रही है फिल्म में, वो तो क्या बात है। 12:07 हो रहे हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है म्यूज़िक कैफ़े, और म्यूज़िक कैफ़े में आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करने वाले हैं थोड़े से अटेंशन स्पैन की तरफ। अब अटेंशन स्पैन क्या होता है? वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में, आपने अभी भी देखा होगा, काफ़ी सारे जो मतलब कहते ना जो थोड़े से बड़े लोग हैं, अब हम बड़े की कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ें, उनको फ़ोन नंबर्स, पता नहीं क्या क्या याद रहता है। और आज के जनरेशन में वो तो सब डिजिटल वाली चीज़ें होती है, हर चीज़ को मोबाइल में सेव करके रखा रहता है, बस खोला और निकाल के देख लिया। कहते हैं इस बात के चलते बहुत सारे बच्चों को अटेंशन स्पैन यानी उनको जल्दी जल्दी चीज़ें ध्यान नहीं रहती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? इसके बारे में कुछ और कहते ना कि बातें करेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है म्यूज़िक कैफ़े। आप भी अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहे तो 8657661071 पर अपनी बात मुझ तक साझा कर सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए अगला गाना अभी आपके लिए प्ले कर रही हूँ, ब्यूटीफुल सा ट्रैक है, सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते ऐसा लगता है कि कुछ याद था लेकिन अब याद नहीं है, ये वाली अटेंशन स्पैन नहीं। कुछ बातें जो याद रखने की कोशिश की जाती है लेकिन हाँ वो हम भूल जाते हैं, ऐसे वाला जो ख्याल होता है उसके बारे में ज़रूर बात होगी। लेकिन फ़िलहाल गुलाम फिल्म का ये गाना आप सबके लिए है।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: बारह बजकर 16 मिनट, प्रोग्राम म्यूजिक कैफे। और दोस्तों की महफिल जब होती है कैफे में तो बहुत सारी दिल की बातें बाहर आ जाती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो जो नई जनरेशन है वो कई बार है ना बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करती है, जो अलग अलग उनके कहते हैं ना उनकी जैसे भाषा ही अलग हो गई है। लेकिन एक और बात पर गौर किया जा सकता है, वो बात ये है कि

हालांकि अटेंशन स्पैन ऐसा कहते हैं कि कम हो गया है, लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसे में, लेकिन अगर उनको जब पढ़ाई करनी होती है तब तो वो बड़े बड़े लंबे सारे पेजेस भी एक साथ पढ़ जाते हैं और वो याद भी रख लेते हैं, फटाफट याद भी हो जाता है। या फिर जब उनको किसी, कहते ना कि सेलिब्रिटीज़ के आजकल फ़ैन पेजेस होते हैं, वो फ़ैन पेजेस पे कितना भी बड़ा कंटेंट हो वो पूरा उनको याद रहता है। फिर अगर अटेंशन स्पैन कम होता है तो फिर ये कैसे याद रहता है? कहीं ना कहीं ये दो अलग अलग बात की चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, एक दो बात ज़रूर होती है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना वो हमें याद जरूर रहती है। क्या लगता है आपको, बताइएगा 8657661071 पर। और दो बहुत ही खास गाने प्ले कर रही हूँ आप सबके लिए, इन दो गानों को सुनिए, बने रहिए हमारे साथ और साथ साथ में कुछ और आगे बातें होंगी। और कहते हैं कि ये दो गाने ऐसे आएंगे जब ऐसा लगेगा कि इसके बीच में कोई बात ना आए। सुनिए, बने रहिए हमारे साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जब हम गुलामी फिल्म का जेहाले मस्किन गाना सुनते हैं लता जी और शब्बीर कुमार की आवाज़ में, और साथ में आज रेशमा जी की आवाज़ में हमने सुना लंबी जुदाई हीरो फिल्म से, ये दोनों गाने इतने बेहतरीन गाने हैं, ऐसा लगता है जैसे इन गानों के बीच में कोई आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल टाइमलेस। हालांकि बहुत ही सारे गाने हैं पर ये एकदम अलग हटके, जो कहते हैं ना, वर्ड्स कुछ अलग है और रेशमा जी की आवाज़ की तो क्या बात है। गुलामी फिल्म का जब हम गाना सुनते हैं ना, तो उस गाने में एक लाइन है कि तुम्हारे सीने से उठता धुआं मेरे दिल से गुजर रहा है। ये लाइन मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, ये सच कहूँ तो

के दर्द को समझने की बात होती है। आमतौर पे हम कहते हैं कि हाँ हाँ आई अंडरस्टैंड यू, लेकिन प्रैक्टिकली ये किसी को भी समझ पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बात कही गई है ना म्यूज़िकली कि तुम्हारे सीने से उठता धुआँ मेरे दिल से गुजर रहा है, दैट मीन्स भाई कि तुम जो भी सोच रही हो वो मुझे मुझ तक पहुँच रहा है। 12:32 और हम कुछ अटेंशन स्पैन की बात कर रहे थे। मुझे मैसेज आया है, जी हाँ मुझे मैसेज आया है महेंद्र देवन का नागौर राजस्थान से। अब जो अटेंशन स्पैन की हम बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात कही कि जब वो कुछ रेडियो सुनते हैं या कुछ गाने सोचने की कोशिश करते हैं तो कई बार बहुत सारी बातें ना एकदम याद आ जाती है, लेकिन बस कुछ ही देर में अगर हम सोचते हैं कि अरे मैंने गाना सोचा था, बड़ा अच्छा गाना था, कौन सा गाना था, अब याद नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें याद आ जाती उस बात से रिलेटेड, लेकिन वो गाना याद नहीं आ पाता। हालाँकि ये देवेंद्र जी, ये महेंद्र जी जो देपन गांव से बात कर रहे हैं, ये स्टोरी तो आजकल हर किसी की हो गई है कि जहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं आती, इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक छोटा सा नोट लिख के रख लिया जाए और फिर बहुत सारी चीज़ों के टेंशन से हम बच सकते हैं। लेकिन वो लिखना भी थोड़ा कई बार वो हम मोबाइल में ही सेव कर लेते हैं, और इसी वजह से तो बात आती है अटेंशन स्पैन को थोड़ा सा ये करने की, मोबाइल ही कई बार बहुत ज़्यादा मोबाइल के एक्सेस यूज़ की वजह से ऐसी सारी चीज़ें होती रहती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। 12:33 अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे कि मुझ तक लोगों के मैसेजेस भी पहुंचने लग गए हैं, हिट एंड हॉट में ये गाना प्ले कर दीजिएगा या ऐसा कर दीजिएगा, तो कोशिश करें कि अभी हम कुछ अटेंशन स्पैन को लेके बात कर रहे हैं तो उससे जुड़ा हुआ कोई संदेश भेजें। 1 के बाद तो हिट एंड हॉट में आप रहेंगे, जिसमें आप ही की पसंद के गाने होंगे। आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ, तो बस आपकी पसंद और हम साथ साथ होंगे 1 के बाद।

हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बारह बजकर 46 मिनट बिल्कुल म्यूजिकली योर्स ही चल रहा है और महेश पोथरा जी का मुझे राजस्थान अजमेर से मैसेज आया है कि किसी बात को करते करते वो है कहते ना कि कहीं पहुंच जाते हैं बात करते करते और फिर उस बात को पकड़ कर लौट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये समझ पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और प्रणव शिंदे जी ने तो भाई एकदम शायरी लिख के भेजी है कि आपकी महफिल में हमारा जिक्र न हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हम वो शख्स है जो न चाहकर भी लोगों की अटेंशन पा ही लेते हैं। हम अपनी सादगी से भी लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। अटेंशन मांगने की आदत तो नहीं पर हम दिल पर राज करते हैं। भाई क्या बात है, ये जो पूरी बात है ना कि तुम्हें अटेंशन चाहिए और हम जहां खड़े हो जाते हैं वहां महफिल बन जाते हैं।

जाती है। ये तो भाई बहुत ही खास बात हो गई है। तो शिंदे जी, क्या बात है, आप तो मतलब हमारे सिर्फ लिसनर ही नहीं, अच्छे खासे शायर भी है। पंकज जी का मैसेज आया है और धनंजय का न्यू मुंबई से मैसेज आया है कि वो उनका जो पूरा ट्रैवल था वो म्यूजिकली हो गया कंप्लीट में। और साथ ही साथ में मुझे राजेंद्र जी का न्यू पनवेल से मैसेज आया है, और ये मुझे कितने सालों से हम और आप कनेक्टेड है राजेंद्र जी। हाँ, कभी

मुझे बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत सी चाय की प्यालियाँ भेजी है कि गर्मी में चाय पी लीजिए। कुछ लोगों ने काला खट्टा शरबत भी भेजा है, मैंगो ड्रिंक भेजे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब बातों के लिए। आपका प्यार साथ में रहता है ना तो फिर कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती। आप लोग तो लंच भी कर रहे होंगे। अब कुछ ही समय के बाद जब मौसम बदलेगा तो इस तरह के गाने ज़रूर आपको पसंद आएंगे। लेकिन अभी के लिए आपके लिए ये गाना।

8657661071 पर हिट एंड हॉट प्रोग्राम के लिए आप अपने रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अब फटाफट अपना जो कहते हैं ना ब्यूटीफुल सा प्लेलिस्ट याद कीजिए, अटेंशन स्पैन को छोड़ दीजिए, फटाफट जो पहला गाना याद आ रहा है जिसको कि आप आमतौर पर गुनगुनाते रहते हैं मुझ तक पहुंचाइए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, क्योंकि कुछ गाने जो होते हैं ना वो मेमोरी में हमेशा कुछ ऐसे बस जाते हैं कि जब हम अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं तो वो गाना सबसे पहले सामने आता है। इन कुछ गानों के साथ लौट कर आऊँगी मैं 1:05 पर, क्योंकि समाचारों के बाद आप और हम होंगे साथ साथ हिट एंड हॉट प्रोग्राम में। लेकिन अभी के लिए ये गाना प्ले कर रही हूँ आपके लिए, सुनते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। कौन सा गाना है सोचिए, सुनिए।

परिंदा फिल्म का ये गाना अभी आपके लिए प्ले कर रही हूँ आशा जी और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ में, और आप ही की रिक्वेस्ट पे सारे गाने फरेब फिल्म के गाने से शुरुआत की थी, और मैसेज आ रहे हैं कि प्रोग्राम की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। सो प्रोग्राम की शुरुआत अच्छी होने की जिम्मेदारी भी आप पे थी, मैं तो बस गाने निभा रही हूँ, वो एक के बाद एक गाने प्ले कर रही हूँ। तो चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं क्योंकि 1:30 बजे फिर से न्यूज़ भी आ जाएगी, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गाने आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं प्ले कर सकूँ। अगला गाना प्ले कर रही हूँ कौन सा, स्वीकार किया मैंने इस फिल्म का, बेहतरीन सी मेलोडी है, इस गाने को सुनिए, बने रहिए हमारे साथ, और 8657661071 पर आप सुनिए ये गाना।

और रेडियो और हम वी आर मेड फॉर ईच अदर, समझे? 1:25 हो रही है। चलिए अब आपकी रिक्वेस्ट का अगला गाना प्ले कर रही हूँ मैं। स्वदेश फिल्म का ये गाना है और अभी गर्मी के मौसम में जो शाम होती है, रात होती है, वो काफ़ी तारों भरी होती है और उस सुहानी सी शाम को इस गाने के साथ अगर सुना जाए तो वो गाना, ये गाना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये जो भर दोपहरी में भी ये गाना चले तो शायद एक ठंडी हवा का झोंका ही आ जाए। सुनिए, बने रहिए हमारे साथ। 1:30 पर होंगे समाचार और समाचारों के बाद हम लौट आएंगे और कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम हिट एंड हॉट को। सुनते रहिएगा 107.1 FM रेनबो, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

1:46 हो चुके हैं, प्रोग्राम ये चल रहा है हिट एंड हॉट। और साथ साथ बता दूं कि अब मैं उन सभी के नाम बताना चाहूँगी जिनकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुँची है। तो सबसे पहले मुझे मैसेज आया, जिनका नाम बता दूं, रेनू और राशि का नालासोपारा से मैसेज आया। साथ ही साथ एज़ यूजुअल मुझे पिंटू का मैसेज आया, विजेंद्र घटोल का अकोला से मैसेज आया, मीना जी का मैसेज आया है, मुकेश कश्यप का मैसेज आया है। उसके अलावा आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, ये मुजफ्फरपुर बिहार से मैसेज आया है, संजय दर्शन जी का मैसेज आया। तो संजय दर्शन जी, हाँ जी, आप मुझे बहुत बरसों से सुन रहे हैं, मैं सोनाली बात कर रही हूँ इस साइड रेडियो पर, और जी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि आपको हम बरसों से सुन रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप और मैं, हम कनेक्टेड भी हैं बहुत सालों से। साथ ही साथ में महेंद्र का नागौर से मैसेज आया है, शुभ लक्ष्मी मस्तकार, प्रणव शिंदे, प्रदीप, अनंत कृष्णन, राकेश माथुर जी का मैसेज आया है, भारती और दुर्गेश नगनपुरे। साथ ही साथ में प्रथमेश डोंगरे का विक्रोली ईस्ट से मैसेज आया है, वैदेही नितिन स्वामी का एरोली से मैसेज आया है, ज्योति घटोल अकोला से। तो विजेंद्र और ज्योति, हाँ जी, सेम रिक्वेस्ट आप साथ में कर रहे हैं, तो अलग अलग नंबर से मैसेज ना करें। मेहर अरोरा का मैसेज आया है, पंकज मोहड़, साथ ही साथ में रितेश शेट्टी का मलाड से मैसेज आया है, और संजय वाजपेयी का मैसेज आया, चेतन कुमार, अनिल का

अमले का हिंगोली से मैसेज आया है और संदीप कुमार का मैसेज आया है, साथ ही साथ में विठल जी का मैसेज आया है और अभिजीत गवहाणकर का मैसेज आया है, अजय साखरे का इंदौर से, महेश बोहारे, धनंजय, यस यस यस, कुछ और कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं। आप सबके मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ में

टेलीफोन धुन में कोई हंस रहा है पहले इसे सुन लेते हैं। दीजिएगा मुझे इजाज़त, मेरी होगी आपके साथ में शुक्रवार को फिर से मुलाकात 11 बजे। इन गानों के साथ में बने रहिएगा 107.1 FM रेनबो के साथ में। 2 बजे के बाद मराठी में होगा प्रोग्राम, कीजिए मेरा नमस्कार स्वीकार। गुड आफ्टरनून कहते हुए जा रही हूँ, चलिए टाटा बाय बाय।

0: big improvement from the previous edition in Tiangshan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing fifth in the men's 110 kg+ category. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheesan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोड़बोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना।

0: के तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: दामोदर मेनोन सतीशन ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के 2रे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए

0: की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

तन्नोदन्ति प्रचोदयात् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणपतिला नमस्कार करां गंगे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी कुम्भजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वरुणाय नमः वरुणाला नमस्कार करां सर्व इष्टमित्रमंडळीना अक्षता मिळाल्या का शुभ मंगल।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 107.1 MHz पर यह है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 kHz के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 5:02 हो चुके हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी. सभी श्रोताओं को माया का प्यार भरा नमस्कार. और आज मेरे साथ है रॉबिन. हाय रॉबिन.
2: नमस्कार आप सभी को. थैंक यू माया.
1: चलिए कार्यक्रम की शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ करते हैं और उसके बाद ढेर सारी बातें आपके साथ.

0: मितवा फिल्म का कभी अलविदा ना कहना, और बहुत ही प्यारा गाना आपने सुना ये। तो मैं माया आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हम ये छोटी छोटी खुशियों जो मिस करते हैं आजकल की लाइफ में, इतनी बिजी लाइफ में, हम बड़ी खुशी का वेट करते हैं लेकिन छोटी खुशी को हम इग्नोर करते हैं, आपका क्या कहना है उसके बारे में?
1: होता ये है ना कि ज़िंदगी आजकल हमारी इतनी मसरूफ़ हो गई है और हमें भी इतना मसरूफ़ कर दिया है इस ज़िंदगी ने कि ये जो छोटी छोटी खुशियों की तुम बात कर रहे हो ना, उससे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हमारे सामने इतने सारे टारगेट्स होते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम ये छोटी छोटी बातें भूल ही जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे सुबह की चाय अगर बिल्कुल कमाल की बन जाए ना, तो इंसान को लगता है 2 मिनट के लिए कि वो किंग है
1: और दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है।
0: और वैसे ही जैसे बारिश के टाइम ट्रेन में जब विंडो सीट मिल जाती है तो लगता है कि जिंदगी सेट है।
1: तो भाई सारी भागदौड़ उसी के लिए तो होती है।
0: जी, तो जिंदगी ना बड़े बड़े लम्हों से कम, छोटी छोटी खुशी के पलों से चलती है। तो आज हम लव यू जिंदगी में उन्हीं छोटी मुस्कानों के बारे में बात करेंगे

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, जब छोटी छोटी खुशियों की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो शायद हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब कभी पीछे मुड़कर देखते हैं या फिर जब ये ऐसे कोई मौके होते हैं, ऐसे पल होते हैं जब हम अपने आप में झांकने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी को टटोल कर देखने की कोशिश करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब हम बहुत खुश हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल माया, मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ।
0: हाँ,
1: कि कल मैं कुछ काम कर रहा था तो मैं कुछ ढूंढ रहा था एक बुक, तो मैं देखा कि वहाँ पे एक स्लैम बुक पड़ी हुई है। और पता है स्लैम बुक की कौन सी थी? जब मेरा फेयरवेल हुआ था ना कॉलेज का, तो मैंने अपने दोस्तों को स्लैम बुक दी थी, जब जो अक्सर करते हैं लोग लास्ट डे, उसमें भरते हैं कि, और उसमें क्वेश्चन होते हैं कि कैसा रहा हमारा सफर आपके बारे, मतलब हम दोनों का साथ में, और मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं,
0: मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे बारे में अच्छी बातें क्या लगती हैं, ऐसी मेरे बारे में बुरी बातें क्या लगती हैं,
1: जी। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो मैंने जब खोल के देखा तो मुझे वो पूरा पल याद आ गया जब मेरे कॉलेज का लास्ट डे था। तो मतलब वो जो खुशी हुई ना आपकी, जो मतलब इतना मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मुझे इतने अच्छा फील हो रहा था।
0: और वो पूरी स्लैम बुक मेरे ख्याल से वो 100-150 पेजेस की होगी, और पूरी भरने तक हमें चैन नहीं होता था। एक आध पन्ना भी रह जाए तो आप किसको बोले, किसको बोले।
1: बिल्कुल। और मैंने तो सारी पढ़ी दोबारा, मेरे सब दोस्तों ने क्या लिखा, और मुझे वो पूरा वो पल याद आ गया मेरे कॉलेज का टाइम का।
0: तो देखिये, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये मतलब हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम क्या है
1: जी,
0: हमारे सोच विचार का ढंग क्या है, हमारा स्वभाव कैसा है, और क्या हम इसे बदल सकते हैं। बहुत सारी बातें दोस्तों, इसीलिए कभी कभी अपने आप में इस तरह से खोकर इन बातों के बारे में सोचना और इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है।

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: जी माया, तो अभी तक तो हमने बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए हैं हमारे लिसनर्स को, और
1: और बातें भी ढेर सारी
0: जी
1: की
0: जी आई
1: हैं।
0: थिंक वो भी जो छोटी छोटी खुशी के बारे में सोच रहे होंगे वो लोग। तो वैसे ही एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब हमारा शो ख़त्म होता है ना यहाँ पे, तो कई बार, क्योंकि बगल में ही मरीन ड्राइव है, तो कई बार ना मैं वहाँ जाके ना बैठता हूँ और जो सनसेट होता है उसको मैं निहारता हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सनसेट को देखो और वो जो कामनेस है वहाँ पे, और ना वहाँ पे लोग आसपास बैठे रहते हैं, कोई रील बना रहा है, कोई फोटो ले रहा है। एक बच्चा वहाँ पे एक फैमिली के साथ, वो वहाँ डांस कर रहा था, तो मैं भी ना उनको देख के मैं भी खुश हो रहा था। तो वो छोटी छोटी खुशी ना, वो मैंने, मतलब मैंने उसको महसूस किया। आप क्या बोलती हैं इसके बारे में?
1: पता है रॉबिन क्या होता है, ये जो तुम बातें कर रहे हो ना
0: जी
1: कि हम कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं या फिर जा रहे हैं, और हमें ऐसे आसपास हमारे कोई चीज़ें दिखती हैं, कुछ हमारे आसपास प्रसंग घटित हो
0: जी
1: रहे
0: जी
1: हैं, उनमें खुशियाँ ढूंढना,
0: हाँ
1: अच्छाई ढूंढना, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी
0: हाँ
1: ढूंढना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, पता
0: जी
1: है।
0: जी
1: क्योंकि बहुत सी बार हमने ये देखा है कि लोग बस अपनी ही धुन में होते हैं या तो मोबाइल में मसरूफ
0: हाँ
1: होते हैं, उन्हें ये आसपास की जिंदगी विच इज़ कॉलिंग आउट, वो बातें दिखती ही नहीं
0: जी
1: है, और फिर इसे ढूंढने जाओ तो भी समझ में नहीं आता। इसके लिए प्रैक्टिस की भी उतनी ही ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल
1: कहने का मतलब यह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि जब जिंदगी जीते हो तो खुल के जीना,
0: जी
1: आंखें खुली रख कर जीना चाहिए, और जब आप ऐसा करोगे ना तो आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा पॉजिटिव
0: जी
1: रहोगे।
0: बिल्कुल सही बात की आपने माया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों घड़ी में बज रहे हैं 5:47 और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। अभी हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी खुशियों की। तो माया, मुझे याद आता है कि खुशियां तो हमारे घर में भी हमें बहुत सारी मिलती हैं,
1: बहुत ज्यादा। हालांकि शुरुआत ही घर से होती है ना।
0: हाँ बिल्कुल। तो अब खुशी की बात हो तो मैं आपको बता दूं, जब मैं घर जाता हूँ ना तो मैं वेट करता हूँ कि कब मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगी। तो जब वो खिलाती है ना तो वो जो खुशी होती है ना, दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और माँ के हाथ खाना एक तरफ, है ना।
1: बिल्कुल। और बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ के लिए बच्चे बच्चे ही रहते
0: जी,
1: हैं।
0: जी, बिल्कुल।
1: तो अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस उम्र में भी खिलाती है तो ये इससे बढ़कर हम ये कह सकते हैं कि और बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती।
0: एक्चुअली क्या ना, मैं इकलौता हूँ तो मैं जो बोलता मम्मी को करना पड़ता है।
1: तो
0: हाँ, मैं कहता हूँ मम्मी मुझे ये चाहिए, मुझे आप ये बनाओ, तो मम्मी को करना पड़ता है क्योंकि मैं अकेला हूँ। और जब वो बनाती हैं तो जो खुशबू आती है ना खाने की, वो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो जो खुशी है वो अल्टीमेट खुशी है।
1: बहुत सही बात कही तुमने। हालांकि ये जो खुशियाँ हैं ना, आजकल थोड़ा सा विलुप्त सी होती जा रही है, क्योंकि आजकल कुछ भी इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है घर में या फिर मेहमान आते हैं तो या तो हम बाहर से खाना मंगाते हैं या फिर बाहर चले जाते हैं, लोगों को लेकर रेस्टोरेंट में जाते हैं, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को लेकर। ये जो चलन है अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पीछे चला जा रहा है।
0: हाँ।
1: लेकिन ये जो बात तुमने कही कि माँ के हाथों के खाने की वो जो खुशबू है,
0: हाँ,
1: और वो हमारे लिए बना रही है, ये जो एक जो भावना है, ये जो एक एहसास है ना,
0: हाँ,
1: ये अपने आप में बहुत तृप्ति को लाने वाला
0: जी,
1: है। क्योंकि एक माँ होती है जिंदगी में ऐसी कि जो सिर्फ हमारे लिए करती है, हम कितने स्पेशल हैं,
0: हाँ,
1: उसका एहसास जताती है।
0: हाँ। और एक और बात है कि ना, जब माँ के हाथ आप खाना खाते हो ना तो आपका, हाँ, सारा स्ट्रेस, सारे ऑफिस का स्ट्रेस या जो भी स्ट्रेस हो आप सब भूल जाते हो।
1: बिल्कुल। और पुष्टिवर्धक तो वो होता,
0: हाँ,
1: ही है। और साथ ही साथ इसके ये भी और ज्यादा फायदे हैं।
0: जी जी जी।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सुनो ना।
2: हाँ।
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: अस्मिता वाहिनीवर.
1: तो दोस्तों, आज हमने बात की छोटी छोटी खुशियों की जो हमारे लाइफ में आती हैं. उम्मीद करता हूं कि आपने भी इसको समझा होगा और आप इसके बारे में सोचेंगे. और जो छोटी खुशियां हमें याद कराती हैं कि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी होती है. तो आज अगर कोई छोटी सी खुशी मिले तो उसे जल्दी में इग्नोर मत करिएगा. ठीक 6:05 में हम आपसे मिलेंगे दोबारा. और अभी आप सुनेंगे, 6:05 में आप सुनेंगे समाचार, और उसके बाद हम आपसे मिलेंगे दोबारा अंदाज़े ब्याह में.

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 6:16 हो रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाज़े बयां.

दोस्तों, अंदाज़े बयां सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हर एहसास को कहने का एक अलग तरीका है। यहाँ लफ्ज़ों से ज़्यादा एहसास बोलते हैं, और हर बात अपने ही एक अंदाज़ में बयां होती है।

0: बाकी सब गंगा।
1: कभी कभी वक्त से बस इतनी सी गुजारिश होती है कि आज जाने की जिद ना करो। ये शाम अभी पूरी भी नहीं हुई, दिल के कुछ एहसास अभी अधूरे हैं, और हवा में जो सुकून है उसे थोड़ा और महसूस कर लेने दो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो।
2: वाह क्या बात है। कभी कभी ऐसे लगता है ना रॉबिन के ये जो शेर व शायरी हैं, ये जो शब्द होते हैं, ये जो कोश होते हैं, बहुत सारी भावनाएं, एहसास, ऐसे लगता है एक ही शब्द में सब सिमट कर आ गए हैं। बहुत कुछ ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
1: बिल्कुल सही बात है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: और आरजे माया के साथ। कभी कभी मोहब्बत बोलती नहीं, बस महसूस होती है, किसी को देखना और दिल का अचानक थम जाना, जैसे वक्त ने खुद से कह दिया हो बस यहीं रुक जा। और उसी एक पल में वजूद में आता है एक खूबसूरत सा एहसास कि तुमको देखा तो ख्याल आया।
1: और जब ये ख्याल आते हैं तो बस आते ही जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उन्हें बयां कैसे करना है ये भी कभी कभी समझ नहीं आता। और ये समझ आता है उन खूबसूरत शायरों को, उनकी शायरी से, उनकी खूबसूरत शब्दों के चयन से ये जो एहसास है और तरोताज़ा और यकीन में बदल जाते हैं, और ऐसे लगता है कि हाँ यही वो एहसास है जो हमारे दिल को कहीं ना कहीं छू कर गया था।
0: वाह माया, क्या बात बोली आपने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, मोहब्बत कभी तेज नहीं होती, ये तो बस धीरे धीरे रूह में उतरती है और एक हल्का सा सुरूर छोड़ जाती है। और जब दिल किसी की खूबसूरती में खो जाए तो हर लफ्ज बस एक ही नाम दोहराता है, आफरीन आफरीन।
1: वाह, क्या बात है। आज तो आपने बहुत सुंदर सुंदर गज़लें सुनी, शेर व शायरी सुनी, और अगला कार्यक्रम कौन सा है ये तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, हमारा अगला कार्यक्रम है हम तुम, और इसमें हम आपकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071 8657661। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आपके जो आपका जो पसंदीदा गीत है उसके बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी हमें मैसेज करनी है। और हो सके तो ये गाना आपको पसंद क्यों है ये आप हमें ज़रूर बताएं, हम उस गाने की फरमाइश, आपके गाने की फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। एक बार फिर से व्हाट्सएप नंबर दोहराए देते हैं, 8657661071 8657661071।

जगजीत सिंह की गाई हुई इस बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ अंदाज़े बयां कार्यक्रम बस यहीं तक ही। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे बातमियाँ और तत्पश्चात 7:10 पर हम तुम कार्यक्रम। एक बार फिर से हम इस कार्यक्रम में मिलेंगे। आप सुनते रहें FM Rainbow।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं. इसके अतिरिक्त आप अपने मोबाइल पर न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह कार्यक्रम इस वक्त सुन सकते हैं. शाम के 7:10 हो चुके हैं और आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम. जी हाँ, आपकी पसंदीदा गीतों का यह कार्यक्रम. इस कार्यक्रम में माया और रॉबिन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं. एक बार फिर से आपको इस कार्यक्रम में आपके पसंदीदा गीत सुनने को बेशक मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना ये है कि हम जो व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे उस नंबर पर आपको मैसेज करना है आपके जो पसंदीदा गीत है उसके बोल, फिल्म का नाम, आपका नाम, ये सारी जानकारी आप हमें व्हाट्सएप करने हैं. तो व्हाट्सएप नंबर है 8657 6 1071.

हाँ, और एक बात ज़रूर याद रखें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको गाने सुनाए जाएंगे, यानी जो पहले मैसेज भेजेगा उसका गाना पहले बजाया जाएगा, वही गाना पहले सुनाया जाएगा। तो फिर बाद में आप ये ना कहिए कि मेरा गाना नहीं सुनाया, क्योंकि देखिए एक घंटे का समय है और उस समय आपकी इतनी सारी फरमाइशें हम तक पहुंचती हैं, तो वो सारी फरमाइशें पूरी कर पाना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है भाई। तो आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और जल्दी से जल्दी हमें मैसेज कीजिए ताकि आपकी फरमाइश सबसे पहले पूरी हो। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अजय साखरे जी से, इंदौर से इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। परिंदा फिल्म से उन्हें आशा भोसले और सुरेश वाडकर का ये गीत सुनना है।

अभी आपने सुना ये बेहतरीन गाना तुमसे मिलके। फिल्म का नाम था परिंदा और सिंगर्स थे आशा भोसले और सुरेश वाटकर। और अब हम चलाते हैं अगली फरमाइश जो की है हमें पंकज महोर जी ने अमरावती से। फिल्म का नाम है पैडमैन और गाने के बोल हैं आज से।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी फरमाइशें हमें भेज रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जितने गाने हो सके हम बजाएं आपके लिए। उसी लिस्ट में अगला गाना जो हम प्ले करने वाले हैं वो है पहला नशा, जो जीता वही सिकंदर, और ये फरमाइश की है फिरोज सिंगापुरिया जी ने।

आपकी फरमाइशें हम तक लगातार पहुंच रही हैं और ऐसे लग रहा है कि शायद ऐसी बहुत सारी फरमाइशें हैं जो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। देखिए कोशिश कर रहे हैं हम। 7:36 हो रहे हैं और हम तुम कार्यक्रम आप माया और रॉबिन के साथ सुन रहे हैं। अगली जो फरमाइश है हम तक पहुंची है प्रकाश शिंदे जी की तरफ से। उन्हें सुनना है शराबे फिल्म से दे दे प्यार दे, किशोर दा का गाया हुआ ये गीत। और उनका कहना है कि इस फिल्म को बराबर 42 हो गए, 18 मई 1984 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और आज बराबर 42 इस फिल्म को

हो चुके हैं। इस फिल्म के सारे ही गीत बढ़िया थे, और इस फिल्म की अगर बारे में बात करी जाए तो इस फिल्म में सबकी एक्टिंग जो है अमिताभ बच्चन को लेकर, वो सभी की एक्टिंग काबिले तारीफ रही है। तो चलिए इस फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: लगान फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अहिल्या नगर से इसकी फरमाइश हमें विट्ठल मुंगसे जी ने की थी। और इसके बाद हम और दो गीत या फिर दो फरमाइशें आप तक पहुंचा सकते हैं। 7:50 हो चुके हैं। अगली जो फरमाइशें हैं वो नेहा जी की है। इसके बाद हम जो गाना आपको सुनाएंगे लता मंगेशकर का गाया हुआ छोटी सी बात फिल्म का गीत इसके बाद हम आपको सुनाएंगे। और तत्पश्चात विजेंद्र जी अकोला से फरमाइश कर रहे हैं मजदार फिल्म के गीत की एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत है। तो दोस्तों ये दो फरमाइशें बैक टू बैक हम आपको सुना रहे हैं और इसी के साथ ही हमारा आज का हम तुम कार्यक्रम बस यहीं तक। कि बहुत सारी फरमाइशें हम तक पहुंची हैं लेकिन हम सारी ही फरमाइशें नहीं पूरी कर पाते एक ही घंटे के प्रोग्राम में। तो अगली बार आपकी फरमाइशें हम ज़रूर पूरी करेंगे इस वादे के साथ। अब माया
1: और आरजे रॉबिन आपसे विदा लेते हैं।
0: नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी

0: हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
1: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में

0: कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। इनमें छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
3: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
2: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
3: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister hoped that using the scale, speed and talent of India, in collaboration with the technology and the capital of Norway, Indian companies would develop global solutions. Norway will also be joining the Indo-Pacific initiative. Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship.
3: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी।

0: साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए, विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

प्रोग्राम चल रहा है रंग महफिल में हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडबो पर। रंग महफिल, रंग महफिल मतलब रंग गजलों के, रंग अल्फाजों के, रंग लफ्जों के, रंग कुछ यादों के और रंग कुछ खूबसूरत, बेहद खूबसूरत आपसे जुड़ी हुई, हमसे जुड़ी हुई बेहतर कहानियों की, कुछ मुलाकातों की, कुछ नजरों की, कुछ अधूरे किस्सों की, कुछ पूरी कहानियों की। फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है मेरे पास, जोगर्स मूवी का है ये, जगजीत साहब की आवाज़ है और इसमें पिक्चर में तो थोड़ा सा अधूरा बन रहा, लेकिन इस गज़ल में कुछ भी अधूरा नहीं, बेहद खूबसूरत आपके अपने प्रोग्राम रंग महफिल में।

सफ़र मोहब्बत या फिर ये कहिए कि जो इश्क का सफ़र है, मुश्किल तो है। और जगजीत साहब की इस गज़ल में जो उनकी आवाज़ में है, सही मैंने बस पे कहते हैं ना एकदम क्लियर कर देना, वो कर दिया। लेकिन एक और भी पहलू है इश्क का, मोहब्बत का। एक तो ये कि सफ़र बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार सफ़र शुरू हो जाए तो दिल कई बार बार बार उसी सफ़र के पड़ाव पर, मकाम पर पहुंचता ही रहता है, भले ही वो सफ़र उस मुसाफिर से किनारा कर ले, लेकिन मुसाफिर उस सफ़र का हो जाता है। फिर रास्ते बदलते रहें या छूटते रहें, मुसाफिर बार बार उसी सफ़र पर, उसी रास्ते पर पहुंचता रहता है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। हमारी जिंदगी में कुछ लोग, या ये कहिए कि कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं कि भले ही उनसे मिले हुए, उनसे बात किए हुए, उन्हें देखे हुए जमाने हो जाए, पर वो रहते ज़िंदगी में ही हैं, जाते नहीं कहीं, इसीलिए उन्हें भूलना बड़ा मुश्किल होता है। जिन्होंने ये जिया है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं जिया उनके लिए गज़ल है रफ़ी साहब की आवाज़ में, फ्रॉम द मूवी चंबल की कसम। बेहद खूबसूरत गज़ल। इन्जॉय दिस वन।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कैसे करूं बयां उसका शबाब हुस्न। कभी उसे सोचता हूं, कभी महताब को। कैसे करूं बयां उसका शबाब हुस्न, कभी उसे सोचता हूं, कभी महताब को। जो भी देखता है उसे होश खो देता है, इसलिए रखती है वो रुख पे हिजाब को। उसकी निगाहें किसी मैखाने से कम नहीं, उसकी निगाहें किसी मैखाने से कम नहीं। कोई इल्जाम नहीं लगने देती शराब को। हर एक पन्ने पे उसका ही जिक्र है, हर एक पन्ने पर उसका ही जिक्र है। एहतियातन छुपा रखा है मैंने किताब को। मेरी दुआएं कबूल हुई हैं शायद, मेरी दुआएं कबूल हुई हैं शायद। कर दिया खुदा ने बराबर हिसाब को। न जाने कब आ जाए वो गरीब खाने पे, हम भी बिजाए रखते हैं राहों में गुलाब को। मैं भूल भी जाऊं वो याद रखती है, मैं भूल भी जाऊं वो याद रखती है अपने सवाल और मेरे हर जवाब को। रग रग में बस गई है एहसास बन कर वो, अब कैसे हद में रखूं दिले बेताब को। आसमां और जमी कहां मिलते हैं नीरज, तुम हकीकत समझ बैठे हो ख्वाब को। बेहद खूबसूरत लाइन्स, शायर का नाम आपने सुन लिया। और अब ये गजल सुनिए जगजीत साहब की आवाज में।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: श्री रंगे महफिल का सफर फिलहाल यहीं तक और ख्याल रखिएगा अपना। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे छोड़े जा रहे हैं आपको एक खूबसूरत गजल के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति,

0: युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। वे श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी
1: 12:05 और 41 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

0: वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा, ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वाणी आकाशवाणी 1:05 और 45 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

सगरे गाँव की गोरिया पुछू पुछू मैं छोड़ रहा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण

0: कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। पीआईबी ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: વાણી આકાશવાણી.
1: दो बजकर 5 मिनट और 35 सेकंड हुए हैं. शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने.

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर

0: सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्य योजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
1: दिस इज आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ 1000 खर्चा, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है।

0: बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: जी खड़े खड़े क्या देख रहे हैं?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखे ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है।

रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की आशंका है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी गर्म और उमस भरे मौसम की भविष्यवाणी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के

आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: याद।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हूँ मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।